0: मेरा नाम दिव्या दीक्षित है. सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स. और पहले मैं जॉब करती थी इंफोसिस में. उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह. पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे, तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई. जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी, तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो. उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए. इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना, तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट. वी लिव इन अ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ, ये इससे मत खेलो, उससे मत खेलो, या फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स.
1: सेकंड गियर फुल क्लच. देखो कितना अच्छा है ना मेरा गियर बॉक्स.
0: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा. लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है.
1: अभी हमें फिर से राइट जाना है. ओके स्लाइटली. ओके
0: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता. तो सिखाने में मतलब वो वहां तक हमें पहुंचना है, बहुत दूर है.

अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल। लेकिन अगर एक

जेंट्स उनको लेके जाए, तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज

लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ, या फिर उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी. नो, आई एम नॉट देयर टू जज. इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए. जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ से किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो. ही किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th day पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट. जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी नहीं मिलती.

0: इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पे. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. Anyone can drive. Anybody can drive. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ.
1: And more mobility and innovation next time on Rev.

0: Info Migrants. Reliable news for migrants, wherever they may be.
1: ऐसे बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ, तो लड़कियों को क्या देते हैं? डॉल।

0: อ้าวกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี่บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเขาอ่ะบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसे कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a main dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
2: Second gear, full clutch. देखो कितना अच्छा है ना मेरा gearbox.
1: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
2: अभी हमें फिर से राइट जाना है ओके स्लाइटली ओके
1: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है

अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल। लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है। बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो। लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी। नो, आई एम नॉट देयर टू जज। इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए, जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th day पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट, जो मैंने कमाई इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती।

इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पर. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है.

0: मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए, आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं.
1: And more mobility and innovation next time on Rev.